आज सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की तरफ से चलो थोड़ा सा म्यूजिक में आ जाए अथन का मुकाबला।

0: अस्सलाम वालेकुम हसाम भाई सलामुन अटांग में आपकी आवाज होके हैं, गाना आप लेकर दे दो पुश्तू खान नरगिस और गुलाले फ्रॉम ब्यूटीफुल टांग। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सोशल सर जी,
0: दाखपल रेडियो रास्ता बंद कीजिए।
1: रेडियो बंद करो
0: जी। जी उस वाय उस तासु आवाज राजी जी। हेलो, ओके कॉल ड्रॉप। गुड मॉर्निंग भाई सिंह भाई, तासुम खैरातुनु बसेगर जई आवाज खूब बसेगर जम सास पहचान भाई रोशनी दर्द सलाम हुआ ये वर्त हुआ है। गुड मॉर्निंग टू और वालेकुम अस्सलाम। हकीमुल्लाह दे तरफ ना नसीब बरमल वाला तर डाले का। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम बलूच क्विटे से हसाम भाई सॉन्ग की फरमाइश करता हूँ, आप सुनाते नहीं है भाई, आज सुना दे दिलराज का सॉन्ग। ओके भाई दिलराज का सॉन्ग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हसाम अजूम रालमा शो समा बदरंगा दस्ता सुभान अजम इंतजार में वर्ता को जमा स्ता सोता द ठक वाले सलाम ज अमनागीम द मोहिब बांडेना और भाई दाशीर में तासुता डाले दे छी वाई मीना में जाहिर द हुसंग ये साबित कलम अच्छे जे हुसूक न वखीचे तासर में मीना दा। ओके जी डेर ज्यादा मन नखुर के डेर ज्यादा शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। हाय सलाम शो और यू जैसे लिख लिए और गुड मॉर्निंग टू टाइम लिसनर को सलाम। आई एम वफा शहजादी इरम चोटा लाहौर। ओके जी चोटा लाहौर से इरम शहजादी, थैंक यू सो मच इरम शहजादी, आप जब भी मैसेज लिखते हो तो उसमें ये स्पेस दे दिया करे ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम तड़ी मसूम
0: पखेरा ली जी तासुम स्टडी मशी प्रोग्राम के तहार के लिए पखेरा ली स्टडी मशी वायम
1: खुशहाल हो सर सरंगे शय बराबर
0: ये जो बिल्कुल जी शय बराबर ये मतास सरंगे
1: अल्हम्दुलिल्लाह रहमदीन खबर है कौन डबर है ना।
0: आ जी द डबर इन रासरा गमगीन
1: रहमदीन रहमदीन
0: रहमदीन या खुदा दो उमर तक हाजिर है पगवगुन द्रुन रहीम रहीमुद्दीन से
1: शाशाल
0: नूर जवान संग रवान दे
1: आवाज जल्ला के काल में दर कड़ाई दा
0: मनन जी मनन रहीमुद्दीन से मुंग सर पे लजल काल करे आनु संग रहीमुद्दीन से नुजमुंग इंतहाब जमुंग द प्रोडक्ट इंतहाब उचर द पे लजल कड़े दे कने मुदे कड़े द इजना
1: या कड़ा को मैं न दे कोई इंशाल्लाह काऊ भाई
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह नुजमुंग द इजना कॉस्मेटिक इंतहाब लाजिमी कोई खा
1: आवा
0: इंशाल्लाह। डियर मनन जी नुकस पैगाम हुई समेसी जो यो खता स्टडी ज्यादा हरकली यो जुलबिया वायमा चिता सुजमुंग दे इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान ता आ हर कले में मुंग सरो को वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
1: वालेकुम
0: डियर मन ने शुक्रिया सासु नुकसो को मुंग सरो प्रोग्राम के शिरकत को लगवानी से पर 335 435 3515 सिफर दो पीरी द्री पिंज सलूर द्री पिंज यो पिंज सिपर 335 435 3515 सवाबई अटक दग इलाके मानसे न डेर ज्यादा खामोश दी चिदा वाली जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
2: हां जा हंजला खबर एक तेलंग काल निकाल दर तो कड़े नऊ सब होता
0: जी जी हंजला सासु सासु सर वक्ती नेटवर्क टिक नऊ कना ओ स्टिक शो सोया
2: आवाज कार न कवर मावेला
0: जी जी
2: मुझो डेर कसान खान दिल नास्ता प्रोग्राम अरू
0: ठीक शो
2: डेर मजारा कई मुस्त डेर खान रा कई तार प्रोग्राम नौ बजो वाल तड़ा बजो तुनी
0: डेर जाता माने ने शुक्रिया हंजला
2: मुझ डेर कलुन द डेर वक्त मुझ लग गई कलुन न तो खताल गेंटी करन द जी कल कार न कई
0: बस उस ते गेंटी मरा गली दा उस कारम कई बस इस पजड़े दी सही सखुले मैसेज दरा उड़ी खुले पैगाम दरा उड़ी खैस्ता खोगी खबर रा सरो का
2: जी जी अब टक्कर वाला ये गाना रहता प्ले की क्या
0: द टक्कर वाला
2: क्या
0: ज कोशिश को मैं प्ले लिस्ट की मास्टर मौजूद हो प्ले कोम दरता सही था
2: अगर लोई ना खबर तो मोहम्मद हंजला।
0: ओके जी मनना हंजला मनला लोई सड़ेश ओके जी अल्लाह हाफिज।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: जानाते से तार सफर के हमें इस्मा वाशिंग पाउडर दी।
5: इस्मा वाशिंग पाउडर मड़ा मिजी मोहकोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक कीजिए दस रंगे सरा प्रोवरे।
4: बिल्कुल तारखाना दा गिले हुए हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इस्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नाफाशोल दी।
5: अच्छा मिस जी, ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी।
4: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी ची कपड़े सा पुशले को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा लोसीना न खर पवी।
5: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी।
4: तारे खाना दाओ तो दाप बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोय मार्किट से देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सारा उदरता मिला भी जी।

अच्छा जी, कॉल तरफ तरह जी, बिल्कुल कॉल वहां से मिलेगी प्रोग्राम की वगैरह बिल्कुल मैसेज शामिल बहुत कॉल शामिल भी बिल्कुल कैसर मोबाइल जोन मंगल मेला इलाज मार्केट चा मैसेज कर दे कैसर भाई मैसेज कर दे सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा वाला ना मैसेज के बोले बिल्कुल मंगल मेले की दस कैसर कैसर भाई सरा देश में टूल प्रोडक्ट मिले भी की दस फाइबर प्लेजी की दुकान नंबर चार की मौलाना अब्दुल हालिक से रहा देश में टूल प्रोडक्ट मिले भी किफायत हो जड़ी मैसेज करे भी माशाल्लाह तारिक भाई आवाज है ओके दे टूल तो सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा वाला ना सलाम तारिक जी भाई संग आवाज ओके दे रेडियो रेडियो चार सदा उम्मीद उम्मीद रेडियो चार सदे बने हया फ्री दी मुक्त मैसेज करे दे बड़ा ना डेरा बने ना लो यहाँ से मैसेज को बोले दिन अलावा बच्चे सलाम तारिक भाई वेलकम इश्मा हर्बल ऑयल जिंदाबाद आई मुस्कान खचक डेरा बने ना बिल्कुल इश्मा कस्मेटिक

0: You are...
1: It's 11 o'clock.
2: It's 11 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।

0: जी फरमाइशी प्रोग्राम खबर संदरे शुरू हिन और तुस भी हिस्सा घिनो का लांदी पे देखन मेरा मिठा भिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। मेरा मिठा कौन कोड़े चू मेरा सोना मिठा भिरा कौन है अपना ना तो दसाने आ फजल करीम। प्रोग्राम किवे लगदा पे तेकू प्रोग्राम विच खुश आमदीद आखे ने ते सद बिस्मिल्लाह आखे ने
1: सुबिया दे वास्ते के मजार गाना फरमाइश लाडी ते या
0: सुबिया ता अदाकार है ओ गुलुकार ता नी।
1: अच्छा
0: सुबिया जेरी है ते संतोष सुबिया सुधीर ए एक्टर हन ते एक्टर नी हन कोई इवे गुलुकार दा हा कोई ना गुलुकार दा होवे कोई गाने दी बोल आवे ते सवा को फरमाइश पूरी कर दे सु जी।
1: चलो ठीक है।
0: हां ओके जी। क्या यार दोस्त को सलाम दे मैं ता वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम दोस्तों एफएम रेडियो 88.4 अमन रेडियो आवाज दी ते प्रोग्राम शुरू पी है खबरें संदरे फरमाइश प्रोग्राम शुरू पी है हिक्का लांदी पे देखन मेरा सोना मीठा बिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। मेरा मीठा बिरा कौन जी? जी अल्लाह दे कदर का। वालेकुम अस्सलाम उमर दाऊद नई मजे जी नमतुल्लाह अरैयमा जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह तासो शैद तो कुम जी ना खबर है कई और कुम कली ना खबर है कई चना मेज है जी। जी प्रोग्राम चरंग लगे जी लगा चेरे फरमाइश दे रहा वड़ा दा
1: फरमाइश को ना नूर ना दे रहा वड़ा कोई वक्सले दा अब्दुल्ला वजीर वाला गाना वाला
0: दो अब्दुल्ला वजीर हाँ चेरे दा से संदारा वेल से लश गोंदे चे मुश्तम अगसी पता वो लगे जी चलो टपा हुआ रमजान अख्तर सरा में चदी। ओके ओके ओके ओके जी सजनो एफएम रेडियो 88.4 टाइम ही थोड़ा रहा पे फरमाइशी प्रोग्राम ही शुरू पी है देखण एक कॉल आँदी पे देखण चलो एक गाने को देखण एक आदमी फरमाइश की है इंदी देखण फरमाइश पूरी करूँ चा और रल के सुन दिया

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकीन नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश, बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप, दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास, हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें, हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राबता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: Am I in the have the Eshma washing powder?
3: I am Ashikulada Badr Hirana. I am pehchan de Eshma Black Shine Shampoo.
4: Zamanum de Dr. Naim Khan Zat Quran Shanglina Mukhatibiyam. I am pehchan de Eshma Acne Tube.
5: Zayam Ismailo Pridai de ACS Barkam Barkhel Madrasa Bazar Haji Jamil Market na de mo intikhab dai Eshma Vitamin C Serum ACS tai o Barkam Bar dai
6: Zayam Bazar de Bashukunna Zama Pehchan de Eshma Milki Protein Shampoo
7: aw Zayam Engineer Masood Dakhuli Banugunna Zama Pehchan de Eshma Rice Face Wash
8: Zayam Maulana Abdul Khaliq de Mangal Melina de mo intikhab da Eshma Herbal Oil
9: Zayam Kari Nur Khitab from Urusa Shopping Center, Ambirikala. Zama Pehchan de Eshma Cosmetics, Pakistan.

को भाई क्या हाल है भाई, आपका प्रोडक्ट टोपे में कहा मिलता है टोपे की जिकम दगा इंसाफ जनरल स्टोर दे द खैबर मार्केट चीदे सही द टोपे द सदर जिकम बाजार तो मिलाई हुई न्यू इंसाफ कॉस्मेटिक स्टोर दे हो चिकम टोल प्रोडक्ट मिलाई हुई गया खैबर मार्केट दे खैबर मार्केट के इंसाफ जनरल स्टोर और टोल ए टू जेड जम का प्रोडक्ट मिलाई हुई हम जानी पखी पखी खबर कवे तासु दरना हम सही जवाब रहने गुस्तासु गुप्ता या मर्दान पखी खबर आता हम मर्दान की शहीदान बाजार के ऐसे दुकानदार सारा तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई गई मर्दान की शहीदान बाजार दे ऐसे दुकानदार दे जवाब दुकानदार चार्ज दे मोहल्ला जिल बिवाल की फवाद जानी सरा तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी प्रसाद खुशहाल बा मजार न दुआगा सलामुना कवि मर्दान ठीक शो हाँ।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DA Khan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Drang. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसर नजर पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है खूबसूरती की।
1: आप आलम।
0: जी जनाब, सुपहर की चार बज चुके हैं और जनाब चार बजते ही आपको ये आवाज सुनाई देती है जो कि है खलील ताबिश आवान की आवाज, और इस आवाज में ढेर सारे पैगाम आप सब लोगों के लिए, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें आप सब लोगों के लिए। बयक वक्त तीन रेडियो स्टेशन टांक डेरा और पहाड़पुर से ब्राह रास्ता। जनाब इस वक्त जो जो जहाँ जहाँ मौजूद है, चाहे डेरा इस्माइल खान में आप सुन रहे हैं मुझे ग्लोबल एफएम 91 से, पहाड़पुर में सुन रहे हैं रेडियो पैगाम 97.4 से, और अगर टांक में सुन रहे हैं मुझे रेडियो अमन 88.4 से, तो जनाब सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा चाचीज, मामा मामी, दादा दादी, नाने नानीज, ऑफकोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबिश आवान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारा प्यार आप सभी के नाम। जी जनाब, एक नई तारीख के साथ, नए दिन के साथ, 29 जून 2026 आज के दिन, और आप लोगों के साथ मैं ब्राह रास्त, बिल्कुल जी आपके तीनों रेडियो स्टेशन से ब्राह रास्त आपके साथ मौजूद हूँ। खैरियत आपकी तलब करना चाहूंगा कि कैसे हैं आप सभी लोग। तो जनाब मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, गुमान ही कर सकता हूँ कि मेरे तमाम जाने वाले, तमाम फ्रेंड्स, तमाम दोस्त, तमाम यूजर्स, तमाम के यूजर्स खैरियत और अफियत के साथ होंगे और रेडियो के साथ चिपक के बैठे होंगे या फिर हैंड फ्री लगा के जनाब हमारे शो केसन टी टाइम जो है बिल्कुल जी बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे। और मैं आज आपको बताऊं कि आज तो मेरे शो का नाम टी टाइम पिछले तीन दिनों से जो है मेरे ख्याल में इसका नाम तब्दील होके जो है टी टाइम के बजाय कोल्ड ड्रिंक टाइम होना चाहिए, क्योंकि जनाब पिछले दो तीन दिन से मैंने भी चाय को छोड़ा हुआ है। पता नहीं आपने छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने अभी भी दूध का ठंडा जामी शीरी वाला जनाब गिलास नोश किया है ताकि जिस्म को जनाब हरारत जो है, जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो, और जनाब जो है किसी किस्म का नुकसान जिस्म को ना पहुंचे, किसी किस्म का जो है जब जिस्म को टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे वजूहात, आपके बहुत सारी अलामत सर दर्द की सूरत में, चक्राव की सूरत में, जनाब हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में सामने आती है। तो जनाब इस मौसम में ठंडी चीजों का इस्तेमाल, चाय बहुत अच्छी चीज है, चाय पीनी चाहिए, चाय के बगैर मजा भी नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल में कि इन दिनों में जबकि शदीद तरीन गर्मी चल रही है भाई, थोड़ा सा गुजारा करना चाहिए और चाय को थोड़ा जो है ब्रेक देना चाहिए। तो जनाब कोल्ड ड्रिंक ब्रेक है इस वक्त आप लोगों के भी, लेकिन आप मुझे पता है आप लोगों ने चाय को नहीं छोड़ना, चाय भी पी रहे होंगे, क्योंकि जनाब कहते हैं ना कि वो लोग जो 45 हरारत में भी, डिग्री सेंटीग्रेड में भी चाय को नहीं छोड़ते हैं ना, वो बड़े वफादार लोग होते हैं। तो पता नहीं अब क्या हम वफादार नहीं रहे, पिछले तीन दिनों से हमने तो चाय को बाय बाय कर दिया भाई। तो मेरी तरह आप भी बताएंगे भाई, आपने भी इस गर्मी में चाय को बाय बाय कह दिया है, कुछ शिकंजी की तरफ आ गए हैं, कुछ जामी शीरी की तरफ, कोई रूह अफजा की तरफ आ गए हैं, या स्टिल वही चाय की प्याली आपके साथ, और असर का वक्त यानी कि ये वाला टाइम। जी जनाब सभी निक्रम कहते हैं कि आराम के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। ठीक है जनाब, एक थोड़ी सी रेलेवेंट बात है इसके साथ कि कहते हैं कि अमीर आदमी ना अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह के पास जाता है जहनी सुकून हासिल करने, अमीर आदमी जो है, और गरीब आदमी अल्लाह के पास जाता है, हाँ जनाब, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, रिज्क के को बढ़ने की दुआएं, बढ़ाने की दुआएं लेकर अल्लाह के सामने आता है। दोनों को जो है मकसद अल्लाह के पास जाने का मुख्तलिफ है, लेकिन होना ये नहीं चाहिए था कि अल्लाह के पास जब भी हम जाएं उसकी वादनियत को एक्सेप्ट करते हुए उसकी मोहब्बत में सजदा, जो सजदे का मकसद जो है बदल गए हैं। यकीन कीजिए कि वो सजदे बहुत कम रहे हैं जो खालिस मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत में आप अगर जो है जी जनाब अगर आप इस हकीकत को थोड़ा सा झांकेंगे गरीबान में, तो आपको भी पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल के वक्त, जरूरत के वक्त, बीमारी के वक्त ही हम अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होते हैं। तो जनाब जहनी आराम के लिए इंसान बहुत कुछ काम करता है, लेकिन कहते हैं कि अगर वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को मुख्तसर कर दे, ٹھیک ہے جناب، اگر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو مختصر کر اس کا سکون بڑھنا شروع ہو جائے گا. کون سی چیزوں کو مختصر کرنے سے آپ کا ذہنی جو ہے سکون بڑھ سکتا ہے؟ اپنے الفاظ کو کم کر دیں، جتنا بولتے ہیں آپ نا کم بولنا شروع کر دیں، آپ کے سکون کی بڑی وجہ بن جائے گا آپ کا کم بولنا. احساسات کو کم کر دیں، خواہشات کو کم کر دیں، اور اپنے آس پاس لوگوں کی تعداد کو بھی کم کر دیں. یہ کچھ کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ذہنی سکون میں یہ بڑے کرامد ہوتے ہیں. نمبر 1 الفاظ، نمبر 2 احساسات، نمبر 3 خواہشات، اور نمبر 4 لوگ. یہ جتنے زیادہ ہوں گے، ان کی جتنی تعداد بہتات میں یہ زیادہ ہوں گے، آپ کے لیے سکون اتنا ناممکن ہوتا جائے گا. ان چیزوں کو جتنا مختصر کریں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان چیزوں کو مختصر کر کے دیکھیے گا. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان، ٹاپک بھی آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں جناب اس شو میں. اور ڈیرہ کے لوگ، چانگ کے لوگ اور پہاڑ پور کے لوگ ایک ساتھ مجھے جناب جو ہے کالز کریں گے، ایس ایم ایس کریں گے، اور بتائیں گے جناب ہمارے ٹاپک کے اوپر بات بھی کریں گے. ساتھ ساتھ میں جناب کیسن نیچرل پاکستان کے، ہاں جی، خاص قسم کے کچھ پروڈکٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وائٹننگ والی پروڈکٹس. ٹھیک ہے جناب، بہت سارے لوگ جو ہے کاسمیٹک کو یوز کرنے والے جو لوگ ہیں نا، اس میں سے 80% لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے بیوٹی پروڈکٹس خریدتے ہیں کہ ان کو وائٹننگ کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو جن کو وائٹننگ کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے آج کا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پروگرام کو سننا بھی ان کو چاہیے، کیونکہ اس کے اندر آج ہم آپ کو وہ پروڈکٹ کیسن کے بتائیں گے جن کا وائٹننگ میں بہت بڑا رول ہے، اور ان کو آپ مختلف طریقوں سے اپنی اسکن کے مطابق استعمال کر کے آپ بھلا کیسے وائٹ فل ہو سکتے ہیں، آپ بیوٹی فل ہو سکتے ہیں، آپ اپنی اسکن کے اوپر وائٹننگ کو لا سکتے ہیں، آپ اپنی اسکن کے اوپر جو ہے نور کو لے کے آ سکتے ہیں.

0: चलो जी, शौक से बात निकली है तो शौक के हवाले से ही आज के टॉपिक रख लेते हैं। और इसके हवाले से देखिए, इंसान जैसे ही पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ आदतें खुद ब खुद डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीजें जो है इंसान को खुद ब खुद अच्छी लगना शुरू कर देती हैं और अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। और फिर इंसान चाहता है कि उन्हीं चीजों के अंदर वो अपना मैक्सिमम जो है वक्त गुजारे, जो मैक्सिमम उसकी लाइफ का वक्त होता है, या जैसे वो मसरूफियात से अपनी जान छुड़वा लेता है तो अपना वक्त उन्हीं आदतों के अंदर, उन्हीं मशगलों के अंदर गुजारने को वो पसंद करता है और उसी के अंदर उसको सुकून भी मिलता है क्योंकि वो उसका शौक बन जाता है। ठीक है जनाब, कुछ शौक सस्ते होते हैं और कुछ शौक जो होते हैं ना महंगे होते हैं जनाब। लेकिन क्या करें ना, दिल को नहीं समझ आती, दिमाग को समझ नहीं आती कि आपने शौक तो पाल लिया है लेकिन यह है कितना महंगा या सस्ता है, लेकिन दिमाग आपको कहता है कि नहीं भाई, ये तो पूरा करके दो, ये तो मुझे चीज चाहिए। सो जनाब, आज आप मुझे बताएंगे शौक के हवाले से, हमारा ये आज टॉपिक है कि आपका सबसे बड़ा शौक जो है वो क्या था या क्या है, या जिसको आपने जो आपका पूरा हो गया है। ठीक है जनाब, शौक की बात करनी है। ठीक है जनाब, एम या इन चीजों की बात नहीं करें, शौक एक सेपरेट चीज है, आपके लाइफ का मकसद वो एक अलग चीज होती है। तो भाई आप लोग ने आप जो मुझे बताना है कि आपके जो शौक हुए हैं वो कितने फीसद जो है, उसमें से कोई एक शौक भी बता सकते
1: शिफा है,
0: हैं।
1: शिफा है
0: ठीक है जनाब,
1: केस।
0: और अगर नहीं हुआ तो ये भी बता सकते हैं, आपका ये बहुत बड़ा शौक है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो जरूर हमारे से शेयर कीजिएगा अपनी कुछ पर्सनल बातें, क्योंकि केसर वाले भी तो आपके साथ पर्सनल बातें शेयर करते हैं ना जनाब। इतनी डीपली पर्सनल बातें आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। और कौन कौन सी बातें हैं जी जनाब, आपको बता रहे हैं कि अगर आपको व्हाइटनिंग का शौक है और अगर आपकी स्किन सांवली सी है, आपकी रंगत काली सी है, ठीक है जनाब, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जनाब, इस वक्त ट्रेंडिंग चीज क्या है व्हाइटनिंग के लिए, व्हाइटनिंग के लिए स्किन को व्हाइट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, अगर हम नेचुरली डेरिवेटिव्स की बात करते हैं कि जनाब क्रीम के अंदर कौन कौन सी चीजें, साबुन के अंदर कौन कौन सी चीजें, फेस वॉश के अंदर कौन कौन सी चीजें हो, अज्जा हो जो आपकी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट करते हैं, तो आपको बताते चलें कि विटामिन B3 जो होता है, विटामिन B3 जिसको हम नियासिनामाइड कहते हैं, ये जिस भी चीज के अंदर मौजूद होगा, चाहे फेस वॉश के अंदर होगा, चाहे सोप के अंदर होगा, चाहे लोशन के अंदर होगा, चाहे क्रीम के अंदर होगा, वो प्रोडक्ट आपको क्या करेगी कि आपको व्हाइटनिंग देगी। ठीक है जनाब, अच्छा इसके अलावा अल्फा आर्बुटीन, ये भी एक इंग्रेडिएंट है, अगर ये भी फेस वॉश के अंदर होगा, क्रीम्स के अंदर होगा, लोशन के अंदर होगा, ठीक है जनाब, ये भी आपकी स्किन को व्हाइट करेगा। विटामिन सी, ठीक है जनाब, ये भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट करने में इसका बड़ा किरदार होता है। ठीक है जनाब, इसके अलावा लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, ठीक है जनाब, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है लिकोराइस मलट्ठी का, जिसे अर्क कहा जाता है, ये भी व्हाइटनिंग में इसका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा कोजिक एसिड, ठीक है जनाब, ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, जो क्रीमों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो फेस वॉश के अंदर इस्तेमाल होती हैं और जो साबुन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन से व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को गोरा करते हैं, नंबर 1 नियासिनामाइड, विटामिन B3, नंबर 2 विटामिन C, ठीक है जनाब, SAP जिसको कहा जाता है, नंबर 3 लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, नंबर 4 अल्फा आर्बुटीन, नंबर 5 कोजिक एसिड। ठीक है जनाब, ये 5 चीजें नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं जो विदाउट केमिकल होते हैं ये चीजें, ठीक है जनाब, और ये बहुत ही सेफ कंसिडर किए जाते हैं। इनसे बनी हुई चीजें आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये 5 अज्जा हमारी लैब के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं, जो केसर नेचुरल पाकिस्तान की लैब है उसके अंदर ये 5 अज्जा जो है इनको हम हर वाइटनिंग प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया नियासिनामाइड, यानी कि विटामिन B3, नंबर 2 अल्फा आर्बुटीन, ठीक है, नंबर 3 कोजिक एसिड, नंबर 4 लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, नंबर 5 जो है मैंने आपको कौन सा बताया है, अल्फा आर्बुटीन। ये 5 अज्जा हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और इनको आप अपने पास सेव कर लीजिए, इनको कभी भी क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, आजकल AI का दौर है और AI के दौर में कोई चीज मुश्किल नहीं रही है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता आजकल के दौर में। ठीक है जनाब, ये इतनी एडवांस दुनिया आ चुकी है कि कोई आपके सामने झूठ का चूरन नहीं बेच सकता, ठीक है जनाब। आप उसे रिबटल कर सकते हैं, आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं और फौरन आके हमें बता सकते हैं कि भाई ये जो है आपने किस तरह बात की है, इसका तो कोई ऑथेंटिक जवाब मौजूद नहीं है। तो ये जो 5 अज्जा मैंने आपको बताई हैं भाई, ये केसन की लैब के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं। और हमारे वाइटनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक ब्यूटी क्रीम से है, चाहे उसका ताल्लुक जो है ग्लूटाथियोन फार्मूले से है, चाहे उसका ताल्लुक फेस वॉश से है, या फिर वाइटनिंग ब्यूटी सोप से है या फेस वॉशेस से है, उनके अंदर इनको यूज किया जाता है मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ। जैसे क्रीम है, क्रीम के अंदर इनकी परसेंटेज ज्यादा ऐड की जाती है क्योंकि आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है जनाब। 5% तक, 3% तक, 6% तक जो है ये अज्जा शामिल किए जाते हैं। अगर कोई इस वक्त कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा मुझे सुन रहा होगा तो वो 100% मेरी बात से एग्री कर रहा होगा कि खलील भाई जो भी बातें बता रहे हैं ना, ये कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो डिफरेंट किस्म की परसेंटेजेस के साथ हम इन एक्टिव, इनको बेसिकली कहा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है जनाब। ये बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि किसी भी क्रीम के अंदर मौजूद होकर, सोप के अंदर मौजूद होकर, फेस वॉश के अंदर मौजूद होकर, जैसे आप स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये चूंकि जिंदा होते हैं, एक्टिव फॉर्मुलेशन में होते हैं, ये फौरी तौर पर आपकी स्किन के ऊपर अपना असर दिखाते हैं और आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट और सेफ तरीके से वाइट हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपकी स्किन वाइट हो जाती है, लेकिन वो नुकसानदेह चीजें होती हैं जो वक्ती तौर पर आपको वाइट करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी स्किन फट जाती है और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है। तो केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास जितने भी वाइटनिंग के प्रोडक्ट हैं वो इन्हीं अज्जा के ऊपर मुश्तमिल हैं, ठीक है जनाब, इन्हीं अज्जा के ऊपर मुश्तमिल हैं। और आप कभी भी हमें जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारी फार्मुलेशन हर प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद होती है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं चीजें वाइटनिंग के लिए, ये वो 5 चीजें हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, ठीक है जनाब, जो कि डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, जो कि इजाजत है जिनकी क्रीमों के अंदर, फेस वॉश के अंदर, सोप्स के अंदर इस्तेमाल करने की। और ये इस्तेमाल होकर क्या क्रीम्स के अंदर मौजूद होकर आपकी स्किन को सेफली

से हमें निकराम। केसर नजर पाकिस्तान के प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को आपके इलाके में मिलते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली जनाब वाइटनिंग के हवाले से। वैसे तो हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, कोई प्रोडक्ट हमारे वजन को कम करने के लिए है, कोई प्रोडक्ट हमारी हाजमे को सेट करने के लिए है, कोई प्रोडक्ट हमारी आपके जोड़ों के दर्द के खात्मे के लिए है, कोई प्रोडक्ट आपके पिंपल्स को एक्नी को खत्म करने के लिए है, ठीक है जनाब, कोई प्रोडक्ट हमारी आपके फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए है, ठीक है जनाब। ये सारी प्रोडक्ट जो है आपके आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आज के लोगों को दरपेश है वो वाइटनिंग का है, और वाइटनिंग भी लोगों को सेफ तरीके से चाहिए तो भाई आप इंतखाब कर सकते हैं केसन की ग्लूटा वाइट रेंज का। सबसे पहले जो चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वाइटनिंग के हवाले से, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो वाइटनिंग के लिए है वो ग्लूटाथियोन है, ठीक है जनाब। और यही वजह है कि हमने ग्लूटाथियोन की एक मुकम्मल रेंज लॉन्च की है, जैसे कि ग्लूटाथियोन की क्रीम है, ग्लूटाथियोन का हमारा फेस वॉश है, या फिर ग्लूटाथियोन का सोप है। तीन इंग्रेडिएंट हमारे इस मुकम्मल रेंज के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर ग्लूटाथियोन को पाया जाता है। केसन ग्लूटा वाइट डे एंड नाइट क्रीम जो आप दिन को भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्विकली आपकी स्किन को वाइट करने वाली, यानी कि ग्लूटाथियोन एक नेचुरल डेरिवेटिव है जो कि आपकी स्किन को बगैर किसी नुकसान के वाइट एंड ब्राइट करता है, ठीक है जनाब। इसी के साथ आप केसन ग्लूटा वाइट डे एंड नाइट जो है क्रीम इस्तेमाल करें, साथ में आप क्रीम के साथ चाहें तो आप हमारा ग्लूटा वाइट का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप ग्लूटा वाइट का सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट रेंज जो कि ग्लूटाथियोन रेंज कहलाती है केसन की ग्लूटा वाइट, आप मार्केट में ले सकते हैं। जैसे कि आप डेरा में मौजूद हैं तो डेरा में मुख्तलिफ दुकानें जैसे कि शीश महल, जैसे कि अलफरीद कॉस्मेटिक, जैसे कि फैमिली शॉपिंग सेंटर, जैसे कि अमान हारसेरा, फारूक हारसेरा चुगला के साथ ये दुकानें हैं, राजा जनरल स्टोर, हाजी गुल जनरल स्टोर, गुलशन कैश एंड कैरी, और इसके साथ साथ जो है A1 कॉस्मेटिक। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर आप वाइटनिंग के शौकीन हैं और अभी तक अगर आपका वाइट होने का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा तो आप एक दफा केसन की ग्लूटा वाइट रेंज खरीदिए। यानी कि तीन प्रोडक्ट हैं हमारे ग्लूटा वाइट के अंदर, क्रीम तो आपने खरीदनी है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जनाब, ऑप्शन ये है कि क्लिंजिंग के लिए आप केसन ग्लूटा वाइट सोप लेना चाहें 250 रुपए का आपको मिलेगा, या अगर फेस वॉश लेना चाहें ग्लूटा वाइट का तो वो आपको 450 रुपए का मिलेगा। तो सबसे प्राइमरी जो प्रोडक्ट है हमारी आपको नेचुरल वाइटनिंग देने के लिए वो हमारी ग्लूटा वाइट रेंज है, ठीक है जनाब। 350 रुपए की क्रीम है, 450 रुपए का फेस वॉश है, और जो साबन है वो 250 रुपए का है। हर जगह आपको आसानी से मिलेगा, पहाड़पुर में भी हर दुकान के ऊपर दस्तियाब है, और इसके अलावा टांक में भी हर जगह पर आपको मिलेगा तकरीबन, और इसके साथ साथ डेरस मुल्खान में तो हर जगह मौजूद है। अच्छा, ये तीन प्रोडक्ट ये वाइटनिंग के लिए हैं। अब इसके बाद और वाइटनिंग के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप फेस वॉश को पसंद करते हैं तो केसन का प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश, प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश आप खरीदें जनाब। बहुत ही अमेजिंग हमारा ये फेस वॉश है, और पहले दिन से ही आपको बताएगा कि इसके कितने जबरदस्त रिजल्ट है, ठीक है जनाब। दो प्रोडक्ट हो गई वाइटनिंग के लिए। तीसरी प्रोडक्ट हमारी जो वाइटनिंग के लिए है वो है जनाब केसन गोट मिल्क सोप, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट वाइटनिंग वाला साबन, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जो है हमारी एक और क्रीम है जिसको हम जफरानी क्रीम कहते हैं। तो वाइटनिंग के

0: जी जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ है और इस वक्त उनको मौका देते हैं, देखते कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो आगे जनाब, आवाज इनकी ब्रेक हो चुकी है। तो टांग के अंदर भाई हमारे बहुत सारे पॉइंट है जहां से आप हमारे प्रोडक्ट हासिल करती हैं। वकास ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है जनाब, ये है बाजार के अंदर, मीन मराज के अंदर, और इनके पास हमारे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। पुरानी सब्जी मंडी के साथ इनका सेटअप है, तो दुकानदार हजरात इनसे होलसेल के ऊपर भी ले सकते हैं और आम दुकानदार हजरात जो है वो भी वकास ट्रेडिंग कंपनी जो है ट्रेडिंग, ये बेसिकली मल्टीपल चीजें सेल करते हैं। तो आप इनके पास मेन बाजार में जाएंगे तो आपको जरूर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, क्या बात है जनाब, बहुत अरसे बाद, बहुत अरसे बाद जनाब, एक बहुत काम के बंदे आए हैं, तो मैं दिल करता है कि मैं इनके इस्तकबाल में खड़ा ना हो जाऊं।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: मैंने कहा मैं इस्तकबाल में खड़ा ना हो जाऊं पहले।
1: नहीं नहीं सर, आप हमारे मोहतरम हैं, मैं खड़ा हो
0: नहीं, हमारे प्यारे जब इतने दिनों के बाद आए तो फिर हमारा हक बनता है कि हम जो है ना इस्तकबाल होकर खड़े होकर इस्तकबाल ना करें अपने प्यारों का। पहलवान
1: जी सर, नहीं सर, आप ना इस्तकबाल करें, हम आपके लिए इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। और
0: असमत असमत कैसे हो भाई, ठीक हो, चंगे वदे हुए तुसा?
1: बिल्कुल खैरियत है सर। ये नहीं हो सकता कि आपका प्रोग्राम नहीं सुन रहे, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, प्रोग्राम आपका रोजाना ही सुनते हैं, लेकिन आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो मुहर्रम में कर्बला के जो वाक्य सुने थे वो बहुत अहम थे।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, आपने हमारी ट्रांसमिशन सुनी वो वाली?
1: बिल्कुल सुनी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि एक सर्विस वालों का।
0: अच्छा, सर्विस का मसला भी
1: हम आपका रेगुलर भी हैं और प्रोग्राम भी है, क्योंकि हमारी मजबूरी अवधि की नहीं है आपको बताया। तो सर हम आपका प्रोग्राम सुन के घंटे में हमें कुछ मिलते हैं, रेडियो प्रोग्राम नहीं मिलता।
0: अच्छा जी, आप माशाल्लाह हमारे घंटा आपको उसी देता है, लेकिन आवाज अभी आपकी ना कटने लग गई, थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे आप? असमत हाँ अभी आ रही है, लेकिन फिर भी वो वाला मजा नहीं है जो शुरू में आ रहा था मजा, जब एक दूसरे से शिकायतें कर रहे थे तो उस वक्त सही आवाज आ रही थी, अब जब आप अच्छा बोल रहे पहले भी अच्छा बोल रहे थे यार, ये केसन का हमने ना केसन की सिम भी निकालनी पड़ेगी ताकि ये मसला हल हो आप लोग ये फिक्र भी आपकी हल जी। अजमत, आपकी आवाज बिल्कुल गायब हो चुकी है, अगर आप जगह चेंज कर लेंगे मेरे भाई तो आपकी आवाज हम बहुत अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। बहुत प्यारे लिसनर हैं हमारे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे यूजर हैं, बहुत अरसे से जो है पहाड़पुर में हम मौजूद हैं, तो पहाड़पुर में हमारी मोहब्बतें आप सुनते होंगे ना, डेरा वाले भी सुन रहे हैं साथ में जो है, पहाड़पुर वाले टांक वाले भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सारी मोहब्बतें जो है वो पहाड़पुर से मिल रही होती हैं और उसकी वजह होती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम खलील भाई।
0: जनाब क्या क्या हाल है, नाम बताएंगे अपना?
2: मैं असमत लाल हुसैन थोड़ी कॉल देते।
0: अच्छा जी, नान से हुसैन
2: मुगल?
0: हाँ वकार मुगल, सारा एक रुसा रुसा सारा दोस्त तुहारे आस पास रहा है, सही? वकार भाई
2: जी, जी
0: आवाज आंदी पई है? सही
2: हुण आंदी पई है,
0: हुण आंदी पई है। तो मैं के सारा एक रुसा होया भिरा तुहारे नाल वसदा है?
2: रुसा भिरा वसदा है।
0: अच्छा, पर सारा हाल हवाल तुहारे को नहीं पूछता रहंदा हो चोरी छुपके? अपना नजर हसन इलाके रहा हो बंदा साडे को रुसा वधा हो सही है
2: छोटे
0: अच्छा चलो मैं आप ही आसा अपने विराग मनावा। तुसा सुनाओ सही ठीक ठाक ही वे चंगे वे देवे माशाल्लाह।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक।
0: प्रोग्राम सुनदे पए वे सारा?
2: जी जी जी प्रोग्राम सुनदे पए।
0: अच्छा ए चिट्टे करण दे सारे जेरे शिया हिन केसन दे जें दे च सादे के वाइटनिंग सोप, मिल्की सोप, प्योर वाइटनिंग, लवली फेस वॉश, ग्लूट, कोई शाय चिट्टा करण ले तुसा सारे इस्तेमाल कीती है सही के नहीं? ओके जनाब उनकी कॉल कट चुकी है। ठीक है जी, ये वकार मुगल थे हमारे साथ और आप लोगों के मैसेजेस बहुत सारे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जनाब, और चलो जी एक और कॉलर हैं और इनको मौका देते फिर उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जनाब जनाब जनाब अब्दुल हादी सड़मशे। बराबर दी बराबर दी अब्दुल हादी
3: जी जी,
0: क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? प्रोग्राम सुनते पे वे
3: मजा।
0: अच्छा तुहाडा कोई कबूतर का शौक है या मैं गलत अंदाजा ला? चिट्टे थीवन का शौक कौन ही तुगो? असल मकसद असल असल बंदे गुलंदे बैठे हैं जो चिट्टे थीवन का शौक हो वैसे। समझ नहीं है क्या दे पे अच्छा मतलब ए, हर बंदे दा शौक है, हर छोर ते हर छेर दा शौक है। हाँ सोना। अच्छा अच्छा सोने होण वास्ते चिट्टा होना जरूरी होंदा?
3: बहुत जरूरी होंदा।
0: अच्छा अगर बंदा चिट्टा ना होवे तो सोना ना हो सी?
3: सोना भी होती
0: बात। अच्छा यानी कि इवें लोग आते हैं कि सामने बंदे भी सोने होंदे बस ओ दिल को तसली देवन वास्ते आग रहे कि सांवला बंदा भी सोना होंदा? सांवला बंदा कोई सोना नहीं होंदा जितने तक कोई चिट्टा नथी वजे। ओ बस अपने दिल को तसली देवन वास्ते कि भाई बंदा जो है बस सांवला है तो भी सोना है लेकिन सांवला बंदा कोई सोना नहीं होंदा।
3: बिल्कुल सोना
0: हाँ तब चिट्टा थीवन वास्ते अगर शौक है तो भाई केसन दे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे सो सारे साबण सारे फेस वॉश सारी क्रीमा तो सारी गारंटी है तुम्हारा शौक पूरा थी इंशाल्लाह। ठीक है सही। ठीक है जनाब इनकी आवाज भी कट गई है और बस आप लोगों की कॉल्स मैंने बहुत सारी ले ली है मेरे ख्याल में और अभी और कॉल है आप लोगों की नहीं ले सकते तो आप लोगों के एसएमएस जो है बहुत सारे आए हुए हैं उनकी तरफ हम बढ़ने लगे हैं। जनाब मुझे कहते हैं खाली

जी जनाब, मैसेजेस आप लोगों की, सर जी सब कुछ साथ चेंज हो गया है लेकिन साथ में चाय चल रही है। अच्छा, जब ये कहते हैं कि भाई सब कुछ चेंज हो गया, मौसम बड़ा गर्म हो गया है लेकिन हमने चाय नहीं छोड़ी है भाई। मुजम्मिल हरल है हमारे साथ, चश्मा रोड से हमें सुन रहे हैं। चश्मा रोड का सुनते ही दिल में ना ठंडक का एहसास होता है। हमारे एक लीडर हुआ करते थे एक दौर में, इमरान खान साहब, उन्होंने शजरकारी मुहिम के जरिए जो है दरख्त लगवाए थे। तो चश्मा रोड के ऊपर जब आप यहाँ से निकले ना, हिम्मत से निकले तो चले जाएं जनाब चश्मा तक चले जाएं, दोनों तरफ से आपको दरख्त मिलते हैं और इनकी अहमियत का अंदाजा गर्मियों में होता है कि ये कितनी तपिश को रोकते हैं और आते जाते हुए मुसाफिर जो है वो कितने ठंडक का सांस लेते हैं जब वहां से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सड़े माशे तास चरंगे। मैं शौक टच मोबाइल, मेरा शौक टच मोबाइल है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। अजी भाई दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दे दे। कौन है जनाब? आई एम दिलराज टांक वाली। हाँ जनाब, टांक वाली दिलराज जो केसन की जो है वेट कम पेट कम जिन्होंने इस्तेमाल किया, माशाल्लाह स्मार्ट हो गई हैं और ये खाती भी कम है। ठीक है जनाब, जितना हम बताते हैं कि भाई इतनी फक्की खाओ हमारी, ये उससे भी आधा चम्मच खाती हैं लेकिन ये कहती हैं कि 15 दिन के अंदर भाई इस फक्की ने तो है जी, लोग देखने वाले बोलते हैं वो ही दिलराज है जी, उसकी कॉपी तो नहीं है। तो भाई इतना ही आपको स्मार्ट बनाती है हमारी वेट कम पेट कम हर्बल फक्की। ठीक है जनाब, आज हमारा स्टॉक लग रहा था शॉप के अंदर ना फक्की का, तो एक भाई आए, उसने कहा मैं जब भी आता हूँ ना, मैं जब भी आपकी शॉप पर आता हूँ कार्टन आए पड़े होते हैं फक्की के और लग रही होते हैं, मुझे लगता है केसन की सबसे ज्यादा फक्की बिक रही है। जी केसन की सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि फक्की बिक रही, मैं तो जब भी आता हूँ इसके कार्टन जो है सेट हो रहे होते हैं। मैंने कहा भाई ये चीज ही ऐसी है जी, बस लोगों को प्यारा बना रहे हैं हम, खूबसूरत बना रहे हैं, कभी लोगों की छाया खत्म करके प्यारा बना रहे हैं, कभी लोगों को सांवलेपन से निकालकर गोरा बना के हम प्यारा बना रहे हैं, कभी मोटापे से निकालकर स्मार्ट करके प्यारा बना रहे हैं। मकसद एक है केसन कंपनी का और वो है जनाब आप लोगों को प्यारा बनाना, और प्यारा लगना या प्यारा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, और आप शर्माया भी मत करें इस बात को लेकर, बल्कि खुश हुआ करें और कहा करें कि भाई प्यारा लगना तो मेरा हक है।

0: जनाब अस्सलाम वालेकुम, हम सब ठीक हैं, आप खुद कैसे हैं भाई? मोमिना टांग से। अच्छा जी मोमिना, आप कैसी हैं? ठीक हैं मोमिना टांग से। बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, और मैं केसन का हेयर जोड़ी, जारा परफ्यूम और लवली फेस वॉश यूज करती हूँ। मेरा शौक मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखना है, और ऑयल और शैम्पू ने अच्छा जी मेरे डैंड्रफ का खात्मा किया है। जारा परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी जबरदस्त है, और फेस वॉश अभी लिया है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी थैंक यू सो मच अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए। जी जनाब मोमिना है टांग से हमारी यूजर, और क्या बता रही है केसन के कितनी प्रोडक्ट्स इनने इस्तेमाल कर ली है। एक लड़की, एक चीज तुमने अभी तक नहीं ली जो तुम्हें बहुत जरूरी है, लेनी चाहिए। एक नहीं बल्कि दो चीजें मोमिना, मेरी बात गौर से सुनो। एक तो ब्यूटी स्प्रे आपने लेना है, ठीक है जनाब, ब्यूटी स्प्रे, ठीक है जनाब। और दूसरा जो है हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम। ये दो चीजें अगर आपने ले ली तो फिर आपको प्यारा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनाब आप ऑलरेडी जो है हमारा फेस वॉश यूज कर रही हैं, आप हमारा ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि आपने अपने बालों के लिए भी केसन को चूज कर लिया है, आप अपने चेहरे के लिए भी आपने जनाब जो है लवली फेस वॉश को चूज कर लिया है, और आपने अपने जिस्म को महकाने के लिए, यानी कि एक तासुर होता है ना, फ्रेग्रेंस जो होती है ना, ये आपकी आपके जो पर्सनैलिटी होती है ना उसको शो करती है। अच्छी खुशबू, महकने वाली खुशबू और तादीर रहने वाली खुशबू जो लोगों के सर में दर्द ना करे, आपका इम्प्रेशन बताती है, ठीक है जनाब। ये बताती है, जितना महंगा परफ्यूम लगाएंगे ना वो आपके वक्त का बताता है कि आपके ऊपर वक्त कौन सा चल रहा है। ये जो आईफोन होता है, आईफोन जो है साढ़े तीन लाख का, 4 लाख का लोग क्यों लेते हैं? मोबाइल तो आप 20,000 का ले लें, उसके ऊपर कॉल भी जाती है, एसएमएस भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये चीजें आपका वक्त बताने के लिए होती हैं कि आपके ऊपर इस वक्त जो है कौन सा चल रहा है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस का इंतखाब, जब आप किसी महफिल में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा जो है ना, हाँ जी पहुंच गया है। मोमिना थैंक यू इतनी ढेर सारी प्रोडक्ट हमारी खरीदने का, और साथ में उनको इस्तेमाल भी करने के बहुत शुक्रिया। गुलशन काजी प्रोडक्ट है, गुलशन काजी में आपके प्रोडक्ट हैं, और कहते हैं कि हीट की प्रोडक्ट है कोई आपकी, खानी है। तो क्या चीज आपने लिखा है, हीट के लिए है, चेहरे की हीट को खत्म करना है, तो भाई हमारा जाफरानी साबुन इस्तेमाल करें, चेहरे की हीट भी खत्म हो जाएगी, साथ में ब्यूटी स्प्रे का इस्तेमाल करें जो कि स्किन टोनर है, आपकी स्किन को अर्के गुलाब और विटामिन सी के साथ बना हुआ है, जो आपकी स्किन को बहुत प्यारा बना देता है। शेख अहमद अवान हमारे साथ मौजूद है, आवाज बिल्कुल जी कहते हैं कि ठीक ना दी है जी। हीरा हमें ज्वाइन कर चुकी है जनाब, शॉर्टपुट से जी। मोमिना ने नहीं बताया कि भाई उनका शौक आज का कौन सा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिमरा हीरा फ्रॉम पहाड़पुर। सर जी शो हमेशा की तरह गुड है, एंड टॉपिक पर ये कहूंगी कि शौक तो मेरे बहुत हैं, जिनमें से कुछ पूरे हुए हैं और वो जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उनमें से एक शौक आरजे बनने का है। जब भी हम ये टॉपिक रखते हैं ना, उसमें दो तीन नमूने ऐसे निकलते हैं जो बोलते हैं हमने आरजे बनने का हमें बड़ा शौक है। बुरे हालात जी, आरजे बनने का शौक है जो मुझे लगता है कि ये शौक मेरा कभी पूरा नहीं होगा, और वो शौक जो पूरे हुए हैं उनमें से एक शौक केसन शो में मैसेज करने का था जो पूरा हो गया है। एंड मैंने केसन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स में से केसन ग्लूटा रेंज, केसन गोट मिल्क सोप एंड केसन लवली फेस वॉश यूज किया है। इन सब के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। लास्ट में सब सिस्टर्स को सलाम सर। जी जनाब ये होता है एक्चुअल वाला आपका यूजर, ठीक है जनाब, ये होता है असल वाला आपका यूजर जो आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई वो आपकी केसन की ग्लूटावाइट रेंज ये हीरा सब ले चुकी है, ठीक है जनाब, यानी कि सो फेस वॉश क्रीम ले चुकी हैं, केसन का गोट मिल्क सोप भी ले चुकी हैं, लवली फेस वॉश भी ले चुकी हैं, और कहती है कि माशाल्लाह सबकी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी, हमारी प्रोडक्ट्स को के ऊपर इतना ढेर सारा एतमाद करने का, एंड वकार मुगल का मैसेज है जी, वकार मुगल मैसेज करते हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। आज जी सलाम जी, अमीर हुसैन ये भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि कॉलर को 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर प्रोडक्ट पर बात करें तो फिर कुछ ज्यादा वक्त ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। यानी कि ये भी कह रहे हैं कि जो भी लिसनर आते हैं तो जनाब वो दूसरों का ख्याल करें और मुख्तसर सी बात शात करें हमारे साथ। हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर केसन के हवाले से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो प्रोडक्ट केसन की प्रोडक्ट्स हैं और उनका ही प्रमोशनल प्रोग्राम होता है, तो प्रमोशनल बातें जितना उसका आरजे करे या लिसनर करें वो कंपनी के लिए फायदेमंद होती है, इधर उधर की बातें हमारे लिए जरा की भी फायदेमंद नहीं होती है, ठीक है जनाब। तो भाई बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो हमारी वाइटनिंग रेंज को इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है जनाब। और मैं आज आपको ये बात आप अपने पास कागज के ऊपर लिख के रख लें कि जो भी वाइटनिंग, अच्छा ये वाइटनिंग रेंज में एक और चीज भूल गया और वो हमारी हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है जनाब, ये मैं आपको भूल गया और ये भी जरूरी आइटम है हमारा। और हाथ पाओं को गोरा करना बहुत जरूरी होता है, जब चेहरा आपका गोरा हो जाए तो भाई हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम भी हमारी वाइटनिंग रेंज का हिस्सा है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम
1: सर जी,
0: क्रीम भी हमारी व्हाइटनिंग रेंज का हिस्सा है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम
1: सर जी, घंटिया तो चाहो घंटिया कार कर थके थे तो रे प्रोग्राम ऐसा
0: है। अच्छा चाह की थी से सही, माफी दे उचे तनाल, माफी दे उचे नान से सो
1: अपना। नहीं, हाल सुनाओ से
0: नान से सो अपना। मोहम्मद जुबैर भाई, कितु वाले ने पे वे सगु शुमाली, किवे हाल है भाई, चंगे वदे वे ठीक ठाक जी, के आखना चाहो से, टाइम बहुत घट है सारे को, आखिरी 1.5 मिनट है सिर्फ।
1: मैं तुम से कॉल जावा चा को प्रोग्राम हिस्सा गिनो छ से।
0: अच्छा जुबैर भाई, तू सारे प्रोग्राम दा हिस्सा ही माशाल्लाह बन गए वे, ते सारी वाइटनिंग वाली कुशा इस्तेमाल की थी वे चिट्टा थी बनवास्ते।

रंग में पता पसे जेड़ी की, रंग में पता पसे जेड़ी की, खल को तवायम चे सवाबी रोजे लरमा।